जाई। रंगी रंगी भाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई, कर कर देखै कीता अपना ज्यो तिह दी वडिआई।

दई। धन धन लोगन के राजा दुस जन दास गरीब नवाजा। अखल भवन के सृजन हारे दास जान मोहे ले होयो बारे। कव्यो बाच बेनती चाओ पई हमरी करो हाथ दै रक्षा पूर्ण होए। चेत की इच्छा

दक्षिणे उपजायो आद अंत के अवतारा सोई गुरु समझी हो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजाजन आप सुवारी।

हर हो रिद्ध सिद्ध कर्म सब होई दुहट शाह शिवै सकै न कोई। एक बार जिन तवै संभारा काल फास ते ताहि उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा दार दुष्ट दोख तेरा। खड़ग केत मैं सरन तिहारी आप हास दै ले उबारी। सर्ब ठौर मोह सहाई दुष्ट दोख ते ले हो बचाई। कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता। किलबिक सकल देह को हरता दुष्ट दोखन को शय करता। श्री अह तुह जन पह दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला। मन बांझ फल पावे सोई दुख न तिसे बे आवत कोई अड़ेल। सुने गोंग जो

मुक्त अंत लहेंगे मुक्त फल पावेंगे भगवंत दोहरा काल पुरुष की देह मो कोटक व्यसन महेश कोट इंद्र ब्रह्मा किते राव सास करोर जलेश दोहरा।

एक ओंकार श्री वाहे गुरु जी की फतेह। श्री भगवती दी सहाय वार श्री भगवती जी की पात साहि दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुर नानक लई त्याए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासे होए सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नाम सिमरौ श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है जिस जिथे सब दुख

साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान तरके बोलना जी पंजां प्यारिया चौहान साहिब जादिया चालिया मुक्तिया

चेते आवे, चेतावन का सदका सर्व सुख होए। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रच्छे आ रहे आए।

बोलना जी वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासे हुए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नाम सिमरव श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई है जिस जिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया कर नौने दया में ताय। सब थाई हुए सहाय साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह। दसवें पातशाह जी सब थाई हुए सहाय। दसा पातशाहियां दी जोत धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दार दा ध्यान करके बोलना जी। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी। आप जी दे हजूर अरदास बेनती आप जी ने कृपा रहमत कीती है। अमृत वेले तो सोहने तख्तां ते प्रकाश मन के दर्शन दीदार बख्शे हन। आप जिया का कोटान कोट धनवाद शुकराना है। इस वेले शाम दे दीवान दी संपूर्णता परंत आप जिया के पावन स्वरूप दे सुखासन दी सेवा हुई है। सोहिला साहब दी बाणी पढ़ी गई है। बाणी पढ़द्यां सेवा करद्यां भुल चुक दी खिमा बख्शना आप जिया के भाणे विच दिहाड़ा सुखां नाल बतीत होया है। आई रहन आप दे पाने विच बतीत होवे। कृपा करो आप जी अपनियां सेजां ते विराजमान होवो। संगतां नूं खुशियां बख्श अमृत वेले दे जागने दर्शन बख्श के निहाल करना। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

तेरे सच मंत्र तुम्हारा अमृत बाणी शीतल पुरख दृष्ट सुजानी सच हुक्म तुम्हारा

नमः अष्टपदी। सिमरौ सिमर सिमर सुख पावो, काल कलेश तर माहे मिटावो। सिमरौ जास विश्वंभर एक, नाम जपत अगनत अनेक। वेद पुराण सिमृत सुदाखियर, किन्ने राम नाम काखियर। किनका एक जिस जीव सावे, ताकि महिमा गनी न आवे। कांखी एक दर्श तुहारो, नानक उन संग मोहे उदारो। सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना के मन विश्राम रहाओ। प्रभु कै सिमरन गर्भ न बसै, प्रभु कै सिमरन दुख जम नसै। प्रभु कै सिमरन काल पर हरै, प्रभु कै सिमरन दुश्मन टरै। प्रभु सिमरत कछु बिघन न लागै, प्रभु कै सिमरन अंध न जागै।

मे अमोल अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान खड़ शास्त्र सिमरत बखियान योग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया सगल त्याग बन मध्य फिरिया अनेक प्रकार किए बहु जतना भुन दान हमें बहु रत्ना शरीर घटाए हमें कर राति वर्त नेम करे बहु भांति नहीं तुल राम नाम विचार नान गुरुमुख नाम जपिय एक बार नावखंड पृथ्वी बिरा जन जीवा है मह उदास पीसर थी बाय अगन माय होमद प्राण करंग सब है भरपूमदा न्यवली कर्म करे बव आसन जैन मार्ग संयम अध साधन निमख निमकर शरीर कटावे तापी हो मैं मैल ना जावे अर्के नाम समसर्ग शनाहे नान गुरुमुख नाम जबत गत पाहे।

काम क्रोध अर लोभ मोह बिनस जाए अहमेव नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी। जय प्रसाद शक्ति अमृत खाहे तिस ठाकुर को रखमन माहे। जय प्रसाद सुगंध तन लावे तिसको सिमरत परम गत पावे। जय प्रसाद बसे सुख मंदर तिसे त्याए सदा मनंदर। जय प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आड़ बहर सिमरो तिस रसना। जय प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याए ध्यान जोग। जय प्रसाद पाठ पटंबर हंडावे तिसे त्याग तबर लुभावे। जय प्रसाद सुख सेज सोई जय मनाड़ पहर ताका जस गावी जय। जय प्रसाद तू सब को माने मुखता को दास रसन मखाने। जय प्रसाद तेरु रहता धर्म मन सदा त्याए केवल पार ब्रह्म प्रभ जी जब दुर्गे मान पावे। नानक पद सेती कर जावे। जय प्रसाद आरोग कंचन देही लबलावत सराम सनेही। जय प्रसाद तेरा उल्ला रहत मन सुख पावे हर हर जस कहत। जय प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढाके मन सरणी पर ठाकुर प्रभ ताकै। जय प्रसाद तुझको न पाहु चै मन सासा सिमरो प्रभ ऊचे। जय प्रसाद आप भुखन पहरिज मन ते स्मृत क्यों आरस कीजै। जय प्रसाद अस सवारी मन तिस प्रभ को कभू ना बिसारी। जय प्रसाद बाग मिलख तना राख प्रोय प्रभ अपने मना जिन तेरी मन बनत बनाई उठत बैठ सत से त्याई। तिसे त्याय जो एक अलख है इहा उहा नानक तेरी रख है। जय प्रसाद करे पुन बहुदान मन आठ भैर कर तिसका ध्यान। जय प्रसाद तुम आचार व्यवहारी तिस प्रभ को सा सा चितारी। जय प्रसाद तेरा सुंदर रूप सुप्रभ सिमरो सदा अनूप। जय प्रसाद तेरी निकी जात सुप्रभ सिमर सदा दिन रात। जय प्रसाद तेरी पत रह गुरप्रसाद नानक जसु कहा। जय प्रसाद सुने करनाद जय प्रसाद वेखे विसमाद। जय प्रसाद बोले अमृत रसना जय प्रसाद सुख सहजे बसना। जय प्रसाद हस कर चले जय प्रसाद संपूर्ण।

जय प्रसाद परम गत पामे जय प्रसाद सुख सह समावे ऐसा प्रभु त्याग बरकत लागो गुर प्रसाद नानक मन जागो जय प्रसाद तुम प्रगट संसार तस प्रभु को मूल ना मनो विसार जय प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूर्त ताको जाप जय प्रसाद तेरे कार्ज पूरे तस जान मन सदा हजूरे जय प्रसाद तुम पावे साज रे मन मेरे तू ता सियो राज जय प्रसाद सबकी गत होए नानक जाप जपै जप सोहे आप जपाए जपै सो नाहो आप गा बाहे सो हर गुण गाओ प्रभु गिर बाते हुए प्रकाश प्रभु दयाते कमल विकास प्रभ सुप्रसन्न बसे मन सोए प्रभु दयाते मत उत्तम होए सर्व निधान प्रभु तेरी मया पो कछु न किन्हु लया।

काशपुराणभया ब्रह्मज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्मज्ञानी की दृष्टमृत बरसी ब्रह्मज्ञानी बंधन दे मुक्ता ब्रह्मज्ञानी की निर्मल जुगता ब्रह्म

ब्रह्मज्ञानी का एकार अंग ब्रह्मज्ञानी का बसा प्रभु सांग ब्रह्मज्ञानी का नाम आधार ब्रह्मज्ञानी का नाम प्रवार ब्रह्मज्ञानी सदा सद जागत ब्रह्मज्ञानी अहम बुद्ध त्यागत ब्रह्मज्ञानी का मन परमानंद ब्रह्मज्ञानी का हर सदा आनंद ब्रह्मज्ञानी सुख सहज निवास नानक ब्रह्मज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म का बेता ब्रह्मज्ञानी एक संहिता ब्रह्मज्ञानी का वह अचिंत ब्रह्मज्ञानी का निर्मल मंत ब्रह्मज्ञानी जिस कर प्रभया ब्रह्मज्ञानी का बड़ प्रताप ब्रह्मज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइय ब्रह्मज्ञानी को बल बल जाइय ब्रह्मज्ञानी को खोजे में सुर नानक ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर ब्रह्मज्ञानी की कीमत

नेत्र साध की ठहल संसंग हेत करना सुने गाहू की निंदा सबसे जाने आप सुख मंदा गुर प्रसाद भिख्या पर हरे मन की वासना मन ते ठराए इंद्री जित पंच दोख ते रहत नानकूट मधे को ऐसा अपरस वैष्णो सो जिसु प्रसु प्रसन्न विष्ण की माया ते हुए भिन्न कर्म कर तो बैने कर्म दिस वैष्णो का निर्मल धर्म का फल की इच्छा नहीं बादशाह केवल भगत कीर्तन संग राचे मंत्र अंतर सिमरन गोपाल सब ऊपर होत कृपाला दृढ़ अवरे नाम जपावे नानक वैष्णो परम गत पावे भगवती भगवंत भगत कारंग सगल त्यागे दुष्ट का संग मंते बिनसे सगला परम कर पूजे सगल पार ब्रह्म सा संग पापा मल खोबे तिस भगवती की मत उत्तम हुए भगवंत की टहल कराए नितनीत मंत्र अर्पा बिशन प्रीत हरके चरण हृदय बसावे नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे सो पंडित जो मन प्रबुद्ध है राम नाम आत्म है शुद्ध है राम नाम सारस भी भाव उस पंडित के उपदेश जग जीवा है हर की कथा हृदय बस

चंद व्यवहार कब उबगाश पयाल कब बेता ब्रह्म विचार नानका मिलावनहार कब हूँ निर्द कर बोपात कबू स्वय रह दिन रात कबू महाक्रोध विकराल कबू सर्व की उदरबाल कबू होय वह बड़ राजा कब भिखारी नीच का साजा कबू अब कीत में आवे कबू भला भला कहावे जो प्रभ राखे तिवि ही रहा गुर प्रसाद नानक सच कहै कबू है पंडित करे बखियान कबू मोहन धारी लावे ध्यान कबू तट तीर्थ स्नान कबू सत्साधक मुख ज्ञान कबू की रहस पतंग वे जिया अनुव जोन पर मैं परमिया नान रब जो स्वांगी दिखावे जो पर भावे ते जो प्रभावे ते मैंने चावे जो तस भावे सोई हुए नानक दूजा अवरण कोय कबू सा संगत पावे उस स्थान ते बहुर न आवे अंतर है ज्ञान प्रगास उस स्थान का नहीं विनाश मंथन नाम रते करंग सदा बसे पार ब्रह्म के संग जो जल में जल आए खटाना त्यों ज्योति संग जो समाना मिट गए गमन पाए विश्राम नानक प्रभ गए सदगुरबान सलोक सुखी बसे मसकीनिया आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले अष्टपदी जिसके अंदर राज मान सो नर्क पाती अवसमान जो जाने में जो बनवंत सो विष्टा का जंत आपस को कर्मंत का आवे जन्म मरे बो जौन प्रभावे धन भूमगा जो करे गुमान सो मूर्खंदा अज्ञान कर कृपा का हृदय गरीबी बसावे नानक यहाँ मुक्त आगे सुख भावे धर्मंत हो कर भावे तिरन समान काश संगना जावे बहु लश्कर मानुख पर करे आस बल भीतर ताक होए विनाश सबते आप जाने बलवंत किनमें जाय बस मंद किस न बद आप अहंकारी धर्मराय करे गवारी गुरप्रसाद जागा मिटे अभिमान सोजन नानक दरगे प्रवान कूट कर्म करे हूं तारे शर्म पावे सगले बिरथारे अनंग तपस्या करे अहंकार नरक स्वर्ग फिर फिर अवतार अनंग जतन कर आत्म नहीं द्रवय हर दरगे को कैसे गवय आपस को जो भला कहावे तसे भलाई निकट न आवे सर्व की रेन जाका मनोय कह नानक दाकी निर्मल सोये जब लग जाने मुझते कश होय तब उसको सुख नाही कोय जब जाने मैं किस करता तब लग गर्भ जोन में फिरता जब तारे को बैरी मीत तब लग रह चल नाही चीत जब लग मोह भगन संग माये तब लग धर्म राय दे सजाए प्रभु कृपा दे बंधन दुटै गुर प्रसाद नानक छुटा सहज घटे लग उड़ता वे तृप्त न आवे माया पाछे पावे नक भोग विख्या के करै न तृप्तावे खप खप मरै बिना संतोख नहीं कहु राजे सुबन मनोरथ ब्रिथे सब काजे नाम रंग सर्व सुहोए बटभागी किसे प्राप्त हुए करण ग्राम नापे आव सदा सदा नान कर जाव करण ग्राम करने आज के आद कहाँ विचार जैसी दृष्ट करे तैसा हो आपे आप आ प्रभ सोए जो किश किनो सपने रंग सबते दूर सब हूं कै संग बुझाए देखे करे विवेक आपे एक आपे अनेक मरे ना मिनसे आवे ना जाए नानक सदी रहा समाये आप उपदेश समझे आप आपे रचया सबके साथ आप किनु आप विस्तार सबका शुष्काव करने हार

संगा दुखी सदा आप बेहत संगा दुखी किसे का नहीं बेहत संगे दुखी को डान लागे संगे दुखी को सब त्याग संगा दुखी मां अहंकारी संगा दुखी सदा विकारी संगा दुखी जन्मा मरे संगी दुखना सुख ते डरे संगे दुखी को नाही ठाऊ नानक संभावित लय मिलाए संगा दुखी अद बीच टूटा है संगा दुखी किते काज ना बाहु चाहे संगे दुखी को ध्यान भरमाइया संगा दुखी उजड़ पाइया है संगा दुखी अंदर ते थोथा जो सास बिना मृतक की लोथा संगे दुखी की जड़ की शनाहे आपन भी जापे ही खाहे संगे दुखी को अवर न राखन हार नानक संभावे तलाय उबार संगा दुखी एओ बिल राय जल भी हूण मछली धड़ फड़ाए संगा दुखी भूखा नहीं राज जो पावक इंद्र नहीं तरापै संगा दुखी छुट अकेला जो बुआड़ तिलखेत माए दुहिला संगा दुखी धर्म तेरा

भक्त जनक मंत्र बिरला गौ पाव संग एक बस तीजे करमया गुरु प्रसाद नाम जपलया ताकि मां कही ना जाए नानक रहा सर्व समाय प्रभक शांति दयाल भगत बशल सदा कृपाल अनाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व घटा करत प्रतपाल आदि पुर कारण करतार भगत जना के प्राण आधार जो जो जपै सोय पुनीत भगत पाए लाभे मन हीत हम निर्गुनियार नीच अजान नानक तुमरी सरन पुरख भगवान सर्वै कुंट मुक्त मोख पाए एक निमक हरके गुण गाय अनक राज भोग बड़ियाई हरके नाम की कथा मन पाए वो भोजन का पर संगीत रसना जपती हर हर नीत परिसो करनी सुबह तनवंत हृदय बसे पूर्ण कुरमंत सा संग प्रभ देहो।

प्रजापष्टपति जब कार्य काशना दृष्टेता पापन तब कहते होता जब धारी अपन सुन समाद बैर विरोध के संकमात जब इसका वर्ण चिन्ह जापत भर्ग सो कऊ किसे व्याप्त जब अपने आप आपार ब्रह्म तमो गांत परमापन घेरा वर तीजा नान करने हार ना दूजा जब होवत प्रभ केवल तनिता बंद मुक्त कहो किसको घनी जब एक हर अगम अपार तब नर्क सुर कहो कौन अवतार तब नर्क सुर्ग कहो कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सह सुभाय तब शिव शकत कहो कित ठा जब आप अपनी जो तरह तब कमन ने डर कमन कत डर आपन चल ताप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार अविनाशी सुख आपन आसंत है जन्म मरण कहो का बिना संजय पूर्ण करता प्रभ सोए तब जमकी त्रास कहो किस होए जब अवगत गोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा जब नाथ निरंजन गोचर अगा दे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे

को मान गावन अभिमान जय स्वरूप केवल जगदीशता छल छिद्र लगत कौ कीस। जय जो सुरपी जो संग समावत किसे भूकम त्रिवताव करन ग्रामन करनिया नान करते का राहे समार। जब अपनी शोभा अपन संग बनाई तब कमन माए बाप मित्र सुत भाई। जय सर्वकलापे परवीन तय वेद गतेव कह कौ चीन। जब अपने आप उतारे तो सगन अब सगन कहा विचार है। जय अपनु जापनाप नेरा तय कौन ठाकुर कौन कहिये चेरा विषमन विषम रहे विषमाद नानक अपनी गत जानू आप। जय छल अशेद अभे समाया ऊहा किसे व्यापत माया। आपस को अभया देश तह गुण का नाही प्रवेश। जय कह एक एक भगवंता तय कौन अजंत किस लागे चिंता। जय अपने आप आपत यारा तय कौन कथे कौन सुनने हारा। बह बयान दूज दे ऊंचा नानक आपस को अभे पहुँचा। जय आप रजो प्रपंच आकार तेह गुण में किन्नो विस्तार। पापुन तय भई कहावत कहु नारको स्वर्ग वंशावत। आर जार माया जंजार हो मैं मोह ब्रह्म व्यापार। दुख सुख मान अपमान अनक प्रकार कियो बख्यान। अपन खेल आप कर देखा है खेल संकोच है तो नानक एक है। जय अवगत भगत आप जय पसरे पासार संत प्रताप। दो बाग आपे दिन तनी उनकी शोभा उन्हों बनी आपे कौतक करे रंग चोज। आपे आनंद करे आपे कौतक करे आनंद जोग। आपे रस भोग अंदर जोग जिस भावित आपन नाए लाभ है जिस भावित खेल खिलाव है।

संजना कह हृदय सब धर्म, संजना सुने सो बचन सर्व्यापी राम संग रचन। जिन जाता तिस किए रहत, सद बचन साधु सब कहत। जो जो होए सोई सुख माना है, करन कराम नहार ब्रभ जाना है। अंतर बसे बाहर भी ओही, नानक दे दर्शन देख सब मोही। आप सद किया सब सत, तिस प्रभ ते सगली उत्पात। तिस भावित करे विस्तार, तिस भावित एक अंकार। अनकला लखी रह जाए, जिस भावित लय मिलाए। कम निकट कमन कहिया, दूरा पिया बा भरपूर। अंतर्गत साप जनाए, नान तना बुझाए। सरभूता बरतारा, सर्वनैना पेखनहारा। सगल समग्री जाका, तना आपन जस आप ही सुना।

समानी दुख रोग बिन सेवे परम साध नाम निर्बलता के कर्म सबते उचता की शोभा बनी नानक एह गुण नाम सुख बनी।

असंख जाप असंख पाओ असंख पूजा असंख तप ताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख योग मन रहें उदास असंख भक्त गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख

बहुत अनूप ताकियां गल्ला कथियां ना जाहे जे को कहे पिछे पछताए तिथे करिए सुरत मात मन बुद्ध तिथे करिए सुरा सदा की सुध।

वासा ही दसवीं छपै छन तुह प्रसाद चक्र चिह अर वर्ण जात अर पाद नहन जिह रूप रंग रेख पेख कहु कह ना सकत के।

तिरपहमही सुर नार असुर नेत नेत बान त्रेन कहत तुआ सर्वनाम कथे कवन कर्म नाम वर्णत सुमत पजांग प्रयाछंद नवाह तवंग काले नवाह तवंग कृपाले नमस्तंग रूपे नमस्तंग अनूपे नमस्तंग भेखे नमस्तंग लेखे नमस्तंग काय नमस्तंग जाय

निर्वाके नमस्तंग ह्रीं मे नमस्तंग क्रीं मे नमस्तंग नन्ते नमस्तंग महन्ते नमस्तहतरागे नमस्तंग सुहागे नमो सर्वसुखं नमो सर्वपौखं नमो सर्वकर्ता नमो सर्वहर्ता नमो जोग जोगे नमो भोग भोगे नमो सर्वदयाले नमो सर्वपाले चात्री शांत वह प्रसाद अरूप है अनूप है अजू है अपू है अलेख है अपेक अपेख है अनाम है अकाम है अतेह है अपहे है अजीत है अपहित है त्रिमान है त्रिवर्ग

है, अभूत है, अछूत है, अलोक है, अशोक है, कर्म है, अपर्म है, अजीत है, अपीत है, अबाह है, अगाह है, अमान है, निदान है, अनेक है, फिर एक है, प्रजांग प्रयाशंद

बाद अनंगी नामे संभाति स्वरूपे प्रभंगे परमाथे संभाति विभूते कलंकं बिनाने कलंकी स्वरूपे नमो राज रजेश्वरं नमो राज रजेश्वरं परम रूपे नमो जोग जोगेश्वरं परम सिद्धे

हर्ता परम परम परमेहरं प्रोजपालं सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालं अशेदीय पेहदीय नामं कामं समाहतो पराजी समस्तस्तामं तेरा जोर चाचरी छंद जले है थले है अपीत है अपेह है अप्रभु है अजू है अदेश है अपेस है पजहंग प्रयास छंद अगा दे बाधे नंदी स्वरूपे नमो सर्वाने समस्ति निधाने नवाह तवंग निर्नाथे नवाह तवंग परमाथे नवाह तवंग गंजे नवाह तवंग अपंजे नवाह तवंग अकाले नवाह तवंग अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राजराजे नमो सार साजे नमो साह साहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो शोक शोके नमो सर्वरोगे नमो सर्वभोगे नमो सर्वजीतं नमो सर्वपीतं नमो सर्वज्ञानं नमो परमतानं नमो सर्वमंत्रं नमो सर्वजंत्रं नमो सर्वदृश्यं नमो सर्वकृत्सं नमो नमो सर्वरंगे त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समस्तं प्रसिजे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी सदा सर्वदा रिद्ध सिद्धं निवासी चरपट शांत वय प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अकाल जोगे अचाल भोगे अचाल राजे अटाल साजे

रूप रंग न जात पासो जानही केह देव तात मात न जात जाकर जन मरण विहीन चक्र बकर फिरे चतर चक मान ही परतीन लोग चौदे के बिखै जग जा पई जह जाप आद देव नाद मूर्त था प्यो सब जह थाप परम रूप पुनीत मूर्त पूर्ण पुरखे अपार सर्व विश्व रचियो स्वयं पव गण भंजन हार कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरख देश धर्म धाम सो परम रहते अभूत अलख अभेस अंग राग न रंग जा कह जात पावन नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुक्त दास काम आप रूप अमीक अन उस्तत एक पुरख अवतूत गर्भ गंजन सर्व भंजन आद रूप असूत अंगहीन अभंग नातम एक पुरख अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपार सर्व घंता सर्व हंता सर्व ते अनुपेख सर्व सास्त्र ना जान ही जेह रूप रंग अरेख परम वेद पुराण जा कैनेत पाखित नित कोर सिमरत प्राण सास्त्र नाव ही वह चित मत प्रशांत वह

एवं सदा है, व्यपगुत स्वरूप है, परजुगत अनुप है, निरुक्त सदा है, विपगुत प्रभा है, अनुक्त स्वरूप है, परजुगत अनुप है, चातरी छंद

सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं जुगता सर्वं मुक्तार सावल शांत वै प्रसाद नमो नरकनासे दैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं बेपूते प्रमाथं प्रमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी नामे त्रिपंगी त्रिकामे निर्पंगी स्वरूपे सर्वंगी नूपे न पुत्र न पुत्र

है परमेश्वर है, अकृता कृत है अमृतामृत है, अजबा कृत है अमृतामृत है, नर नायक है खल कायक है विश्व।

बीज बीजे नमो राज संग ताम संग साध रूपे नमो परम तत्ंग तत्ंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने

वाहेगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतगुर प्रसाद पातशाही दसवीं तवै प्रसाद सवैये सरावग सुद समूह सिदान के देख फिरयो कर जोग जति के सूर सुरार्दन सुद सुधाधक संत समूह नेक मति के सारे ही देश को देख रहे हो मत को न देखियत प्राण पति के श्री भगवान की पाए कृपा हूं ते एक रति बिन एक रति के माते मतंग जरे जर संग अनुपिव तंग सुरंग सुवारे कोड़ तुरंग रंग सिख उदत पावन के गौन को जात निवारे भारी पजहन के भूप भली बिदन आवत शीस न जात बिचारे ते पहे तो कह पहे भूप तंत कव ना गेही पाए पधारे जीत फिरे सब देश दिसान को बाजत ढोल मृदंग नंगारे गुंजत गुंजत गुड़ गजान के सुंदर।

चलेंगे। वीर अपार बड्डे बरेहार विचार है सार की धार पछैया तोर देश मलिंद मुसन माते गजान के माल मलैया गाड़े गड़ान के तोल हार सुबह तरही चक चार लवैया साहेब श्री सब को श्री नायक जाच एक नेक सो एक दिवैया दानव देव फणिंदर साचर पूंद पवेक भवान जपेंगे जीव जीते जल में थल में पल ही पल में सब थाप थपेंगे था।

रक्षा निज कर दय करिए, सब बैरिन को आय संघरिये, पूर्ण होए हमारी आशा तोर भजन की रह प्यासा, तुम्हें छाड़ को अमर न त्याऊं, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं, सेवक सिख हमार

विदयत जच्छने उपजायो आद्यंत एक अवतारा सोई गुरु समझी हो हमारा नमस्कार तिसही को मारी सकल प्रजा जन हाव सुवारी सेवकन को सबकन सुख दियो सतरन को फलमो बद कियो कर कर के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पिछांत चीटी ते कुंचर असथूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने कर कर

अनुमानत महामूढ़ कह भेद न जानत महादेव कौ कहत सदा सेव निहंकार का चिंत नह पिहव आप अपनी बुद्ध है जेती वर्णित भिन्न भिन्न तुह तेती तुमरा लख न जाय पिसार केह विद सजा प्रथम संसार।

शिव सकै न कोई। एक बार जंत वै संभार काल फास ते ताही बारह जन नर नाम तिहारु कह दार दुष्ट दोख तेरा। खड़ग केत में शरण तिहारी आप हास दैले हो बारी सर्ब ठौर मोहो सुहाई दुष्ट दोख तेले हो बचाई। कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सबराता किलबुक सकल देह को हरता दुष्ट दोखेण को शय करता श्री अह तो जम पह दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन बाहित फल पावे सोई दुख न तिसे बेआवत कोई अड़ेल। सुने गुंग जो जाय सुरस न पावई सुने मूढ़ चित लाए चतुरताया वही दुख दर्द पहो निकट ना तर नर के रह। हो जो जा की एक बार चौ पही को कह चौ पही संबद सत्रह सहपनी जय अर्ध सस पुण तीन कह जय। भाद्रव सुधी अष्टमी रव वारा तीर तद्रव ग्रंथ सुधारा सवैया। पाए गए जब ते तुमरे तब ते कुंवांग तरे नहीं आने राम रहीम पुराण कुरान उन्हें कह मत एक न मान्य सिमृत साह।

साहब वाहिगुरु जी की फतेह। राम करे महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरु ता पाया सहज सेती मन वधिया वाधाइया राग रतन परिवार परियां शब्द गावने आईया।

हुकम मन पाइये, हुकम मन हो गुरु के रागा भो सची बाणी, कहे नानक सुनो संत हो कथे हो अकथ कहानी, ए मन चंचला चतुराई कने न पाया, चतुराई न पाया कने तू, सुन मन मेरिया एह माया मोहनी जिन इत परम पलाया, माया त मोहनी तिने कीती जिन ठगौली पाईया, कुर्बान कीता तिसे विटहो जिन मोह मीठा लाया, कह नानक मन चंचल चतुराई किने न पाया, हे मन प्यारिया तू सदा सच संभाले, एहो कुटम तू जे देखदा चले नाही तेरे नाले, साह तेरे चले नाही तिस नाल क्यों, चित लाइए ऐसा काम मूले ना कीचै जित अंत पछोताइए,

है से हर हर सदा दयाव है, जिसनो कथा सुना है अपनी से गुरुद्वारे सुख पाव है। कह नानक सच्चे साहिब ज्यों पावे ते वै चलाव है। एहो सोहिला सबद सुहावा, सबदो सुहावा सदा सोहिला, सतगुरु सुनाया। एहो तिन कै मन वसिया, जिन तुरहु लिखिया एक।

वेत होए गुरुमुख जनी त्याया पवेत माता पिता कुटाम सह स्यो पवेत संगत सुबाइया कह दे पवेत सुन दे पवेत से पवेत जिनी मन वसाया कह नानक से पवेत जिनी गुरमुख हर हर त्याया करमी सह न उपजाय बिन सहज ससा न जाय नह जाय ससा कितै संजम रह कर्म कमाए सह से जियो मलीन है कित संजम धोता जाय मन धोव शब्द लागू हर से और हो चित लाय कह नान गुर प्रसादी सहज उपजय इह सहसा में जाय जियो मैले बारह निर्मल जी हो ता मैले तिनी जन्म जू है हारिया

आर्य जी हो निर्मल बार हो निर्मल बार होता निर्मल जी हो निर्मल सतगुर ते करनी कमाणी कूड़ की सोए पहुचे नाही मन साठ समाणी जन्म रतन जिनी खटिया भले सेवन जारे कह नानक जन्म निर्मल सदा रह गुर नाले जे को सिख गुरु सेती सनमुख होवै होवै ता सनमुख से कोई जी अहो रह गुर नाले गुर के चरण हृदय त्याहे अंतर आत्म संभाले आप छड़ सदा रह परने गुर बिन अवर न जाने कोय कहे नानक सुनो संतो सो सिख सनमुख होए जे को गुर तेवे मुख होवे बिन सतगुर मुक्त न पावे पावे मुक्त न होर थे कोई पुछो वेखिया जाए अनेक जूनी परम आवे बिन सतगुर मुक्त न पाए फिर मुक्त पाए लाग चरनी सतगुरु शब्द सुनाए कह नानक विचार देखो बिन सतगुर मुक्त न पाए आप सिख सतगुरु के प्यारे हो गाव सच्ची बाणी बाणी तगाव गुरु केरी बाणिया सरबाणी जिन कौ नदर कर्म होवे हृदय तिना समानी पीव हो अमृत सदा रहो हर

तार न जानी तिहि गुणी संसार ब्रह्म सत्ता सत्या रैन विहानी गुर कृपा ते से जन जागे जिन्ना हार मन वस्या बोलहे अमृत बाणी कहे नानक सो तत पाए जिसनो अंदर हर लिव लाग है जागत रैन विहानी।

भारवत से बने आए। ये शरीर मेरे हर तुम मह ज्योत रखी ता तू जग में आया, हर ज्योत रखी तुद वे ता तू जग में आया। हरे आपे माता आपे पिता जने जी ओ पाए जग दिखाय।

दर्शन हुए प्यास, प्रभ तुद बिन दूजा को नहीं, नानक की अरदास। असाढ़ सुहंदा तिस लगे जिस मन हर चरण निवास, सावन सरसी कामनी चरण कमल स्यों प्यार, मन तन रत्ता सत रंग इको नाम उधार, बिखिया रंग कुड़ाव्या दिसन सबे शार, हरे अमृत बूंद सुहावनी मिल साधु पीवन हार, वन तिन प्रभ संग मौलिया समरथ पुरख अपार, हर मिलन नो मन लोचदा कर्म मिलावन हार, जिन्नी सखिए प्रभ पाया हो तिन कै सद बलिहार।

हेत लाख सिंगार बनाया कार जना ही केत जित दिन देह बिन सही तित वेलै कैसन प्रेत पकड़ चलायन दूत जम किसे न देनी भेत छड खड़ो ते खिणे माहे जिन स्यों लगा हेत हाथ मरोड़े तन कपे स्याहो हो आसेत।

पाए, वेण प्रभ क्यों सुख पाइए, दूजी ना ही जाए, जिन्नी चाख्या प्रेम रास से तृप्त रहे आगाए, आप त्याग बिनती करे लेहो प्रभु लड़ लाए, जो हर कंत मिलाइया से बिछड़ कत ही न जाए, प्रभु विण दूजा को नहीं, नानक हर सरनाए।

तोर संयोग वडपागी मेरा प्रभ मिले ता उतर सब योग नानक का प्रभ राखे ले मेरे साहिब बंदी मोज कतक होवे साध संग बिनसे सबे सोच मंग

मुहूर्त पले जिस कौ नदर करे नानक मंगे दर्श दान कृपा करो हरे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

की निज घर वासा होए, वाहिगुरु बेशुमार अथाह अगणत अतोला, ज्यों बुलाव हो त्यों नानक दास बोलै। सतनाम धन वाहे गुरु जी सोरठ, महला पंजवा, अमरी गणत ना गणिया काई, अपना बिरद पछाण, हाथ दे राखे कर अपने, सदा सदा रंग मान, अमरी गणत ना गणिया काई।

अपने सदा सदा रंग मान साचा साहिब सद मेहरवान बंद पाया मेरा सतगुर पूरा होई सर्ब कल्याण रहाओ जियो पाए पिंड जिन साजिया दिता पैनन खान अपने दास की आप पैज राखी नानक सद कुर्बान जियो पाए पिंड जिन साजिया दिता पैनन खान

जह जह पेखो तह हजूर दूर कत हो ना जाई राव रहे आसर बतर मा मन सदा त्याई जह जह पेखो तह हजूर दूर कत हो ना जाई राव रहे

बिरद पयो सूज नहीं काल पहुँचियो आन कहो नानक नर बाबरे क्यों न पजा।

कहो नानक सुन रे मना ज्ञानी ताहे बखान जह बिख्या सगले तजी लियो पेख बैराग कहो नानक सुन रे मना तेह नर मथ भाग जह माया ममता तजी सब ते भयो उदास कहो नानक सुन रे मना तह कट ब्रह्म निवास जह प्राणी हौ मैं तजे करता राम पछान कहो नानक बहु

नर चाहत कछ औरै की औरै भई चित बित रहे उठ गौर नानक फासी गल परी जतन बहुत सुख के किए दुख को कियो न कोए कहो नानक सुन रे मना हर पावै सो होए जागत पिखारी फिरत है सबको दाता राम कौ नानक मन

गर्भ करता देह को बिनसा छिन मेता, जह प्राणी हर जस कहो नानक तेह जग जीता, जह कट सिमर

एक भगत भगवान जय प्राणी कह नाहे मन जैसे सुकर सुवान नानक मानो ताहे तन स्वामी को गृह जो सदा स्वान तजत नहीं नत नानक ए बिद हर पजो एक मन होए एक चित तीर्थ बरत अरदान कर मन मैं धर गुमान नानक ने फल जात तेह ज्यो कुंचर इशनान सिर काम प्यो पग डग मगा नैन जोत तेहीन कहो नानक

कहो नानक अब ओट हर गज ज्यो हो सहाय बल हो आ बंधन छुटे सब किछ होते अपाए नानक सब किछ तुमरा हाथ मा तुम ही होत सहाय संग सखा सब

राम नाम और मैं गहे ओ जाका सम नहीं कोए, जय सिमरत संकट मिटा दर्श तुहारो होए। राम नाम और मैं गहे ओ जाका सम नहीं कोए, जय सिमरत संकट।

सब पुत्र रागन के आठारह दस बीस। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचा सोच न हो वही जे सोची लख बार चुपा चुप न हो वही जे लाए रहा लवतार भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया भार सहस स्यानपा लख हो हे ता एक न चला नाल किब सचियारा होई है किब कूड़ा तुट्टा पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहे आ जाई हुक्मी होवन जी हुक्म लै वड्याई हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाइया है एक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा पवाइया है हुक्मै अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोए नानक हुक्मै जे बुझै ता हुमै कह न कोए गावै को तान होवै किसै तान गावै को दात जानै निशान गावै को गुण बढ़ाइया चार गावै को विद्या विखम विचार गावै को साज करी तनखे गावै को जी लै फिर दे गावै को जापै दिसै दूर गावै को वेखै हादरा हदूर कथना कथि न आवै तोट काथ काथ कथि कोटि कोटि कोट देंदा दे लेंदे तक पाहे जुगा जगंतर खाही खाही हुक्मी हुक्म चलाए राहो नानक बिकसै बेपरवाहो साचा साहेब साजनाए भाख्या पाओ अपार अख है मंगह देह देह दात करे दातार फेर के अगा रखिया जे दिसै दरबार मोह के बोलन बोलिया जर सुन तरे प्यार अमृत वेला सच नाओ बढ़ियाई विचार करमी आवै कपड़ा नदरी मोख द्वार नानक एवा जाणिया सब आपे सचियार थापिया ना जाए कीता ना होए आपे आप निरंजन सोए जिन सेव्या तन पाया मान नानक गाविया गुणी निधान गाविया सुनिया मन रखिया पाओ दुख पर हर सो कर लै जाए गुरमुख नादं गुरमुख बेदं गुरमुख रहया समाई गुर ईश्वर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई जे हा जाना आखा नाही कहना कथन ना जाई गोरा एक देह बजाई सब ना जिया का एक दाता सो मैं विसर ना जाई सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत दिवस रात दुविधाई दाया खेलै सगल जगत चंगियाईया बुरियाईया वाचै धर्म हदूर करमी आपो अपनी के नेड़ा के दूर जिन्ने नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल।

हमरी गणत न गणिया काई अपना बिरद पछाण हाथ दे राखी करे अपने सदा सदा रंग माण साजा साहिब सद मेहरबान बंद पाया मेरे सतगुर पूरा होई सर्ब कल्याण रहाऊ जियो पाए पिंड जिन साजिया दित

सोठ महला पंजमा। हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता। हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता। हम मूर्ख तुम चतुर सियाने, तू सर्व कला का ज्ञाता। हम मूर्ख तुम चतुर सियाने, तू सर्व कला का ज्ञाता। माधो हम ऐसे तू ऐसा, माधो हम ऐसे तू ऐसा, माधो हम ऐसे तू ऐसा। हम पापी तुम पाप खंड, निको ठाकर देसा। हम पापी तुम पाप खंड, निको ठाकर देसा रहाओ। तुम सब साजे साजन वाजे, जियो पेंड दे प्राण। तुम सब साजे साजन वाजे, जियो पेंड दे प्राण। निर्गुण यारे गुण नहीं कोई, तुम दान देहो मेहरबान। निर्गुण यारे गुण नहीं कोई, तुम दान देहो मेहरबान। तुम करो भला हम भलो न जाने, तुम सदा सदा दयालु। तुम करो भला हम भलो न जाने, तुम सदा सदा दयालु। तुम सुखदाई पुरख बदाते, तुम राखो अपने बाला। तुम सुखदाई पुरख बदाते, तुम राखो अपने बाला। तुम दान अटल सुल्तान जी जन सब जाचे, तुमने दान अटल सुल्तान जी जन सब जाचे। कौ नानक हम हे हवल राख संतन के पक्ष, कौ नानक हम हे हवल राख संतन के पक्ष, कौ नानक हम हे हवल राख संतन के पक्ष। फिर कर वह है सो हर जन प्यारे, सतगुर तुम्हारे काश वार। फिर कर वह है सो हर जन

जेह सिमरत गत पाई तेह भज रीतै मीता। कहो नानक सुन रे मना औध घटत है नीता।

तल नर चाहत कछ और की और पई चितवत रह उठ गौर नानक फासी घल परी जतन बहुत सुख के किए दुख को कियो न कोय कहो नानक सुन रे मना हर भावै सोय।

स्वामी को ग्रह जो सदा सुआन तजत नहीं नेता नानके बेद हर भजो एक मन हो एक चेता तीर्थ बरते अरदान कर मन मैं तरह गुमान नानक ने फल जात तेहे ज्यों कुंचरे स्नान सिर

तथापि सालू सारग सागरा और गोंड गंभीरा इष्ट पुत्र श्री राग के गोंडा कुंभ हमीरा खष्टम एक राग वै गावे पंचो संग बरंगन लावे सोरठ गोण मलारी तुनी पुन गाव है आसा गुण गुणी उचा सुर सूहू पुन कीनी मेघ राग स्यों पांचो चीनी बहरा।

हर कथा पढ़िए हर नाम सुनिए बेबान हर रंग गुर पावै पिंड पत्तल क्रिया दीवा फुल हर सर पावै हर पाया।